0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य

सुप्रभात, ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 31वीं तिथि, तदनुसार 22 जुलाई सन 2026। सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। इस सभा में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है।

0: यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में समाचार होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
2: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कुब्जे में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की 2 दिन की फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। उनके द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे। श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में जीएनकेएनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुप्पुर में अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री मोदी को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन 1 अगस्त को प्रस्तावित है। श्री चंद्रबाबू नायडू केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर और सीआर पाटिल के साथ राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर कर सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं। 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत का पहला मैच 15 अगस्त को वेल्स के साथ होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: अभी समाचारों का अनुप्रसारण किया गया आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। इस कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हर रोज की तरह कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं समूह स्वर में गाई इस मातृ वंदना के साथ। रचना है डॉक्टर ललित मोहन की, संगीत है रमेश इंदु बसु और सरबत हुसैन का।

मातृवंदना अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में। रचना थी डॉक्टर ललित मोहन की, संगीत था रमेश इंदु बसु और सरबत हुसैन का। और आइए अर्चना कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं ये गणपति वंदना, स्वर हरिओम शरण का, रचना हरिओम शरण की और संगीत है हरिओम शरण का।

इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना, और इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं ये पारंपरिक रचना। स्वर है लक्ष्मी शंकर।

और आइए कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं चंद्रशेखर पांडे की रचना, संगीत मुरली मनोहर स्वरूप का है, स्वर है CH आत्मा का।

चंद्रशेखर पांडे की रचना अभी आपने सुनी। संगीत था मुरली मनोहर स्वरूप का। आवाज थी सीएच आत्मा की। इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।

यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 6:25 हुए हैं। आइए आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 6:30 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर होंगे भूपेंद्र सिंह और मिताली बी सिंह और साथियों के। आज आप सुनेंगे इसका 56वां भाग। भूले बिसरे गीत सुनिएगा सुबह 6:40 से। संस्कृत में समाचार होंगे सुबह 6:55 से। इन्हें हम रेडी करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हमारा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह पेश किया जाएगा सुबह 7 से। सुबह 7:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम कृषि संकेत। इस कार्यक्रम में आज का विषय है खरीफ में नींदा नाशक का उपयोग और सावधानियां। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर एमपी दुबे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम रैली करेंगे सुबह 7:10 से। मन चाहे गीतों का कार्यक्रम पेश किया जाएगा सुबह 7:20 से। संगीत सरिता ये कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 7:45 से। समाचार प्रभात का वक्त होगा सुबह 8 का। रैली करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। लोक संगीत के कार्यक्रम में कुछ बुंदेली लोकगीत आप सुन सकते हैं सुबह 8

0: बजकर 15 मिनट से। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम होगा सुबह 8:45 से। सुबह 9 बजे से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिली किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। जिले की चिट्ठी सुनिएगा सुबह 10 बजे से, इसे हम रिली करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। सुबह 10:05 पर आप सुन सकते हैं प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ्य तन स्वस्थ जीवन। फोन करें, गीत सुने। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण किया जाएगा सुबह 10:10 से। सुबह 11 बजे से सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सुबह 11:30 पर सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, इन्हें हम रिली करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा दोपहर 2 बजे से। प्रादेशिक समाचार रिली किए जाएंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से दोपहर 2:10 से। दोपहर समाचार का वक्त होगा दोपहर 2:15 का, रिली करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। बाकी के कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: आइए आपको जानकारी देते हैं कुछ और कार्यक्रमों के बारे में। शाम 5 बजे से सुनिएगा इस घंटे की सुर्खियां, रेडी करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी होगा शाम 5:02 से। संगीत सरिता ये कार्यक्रम सुनिएगा शाम 5:30 से। युवा साथियों का कार्यक्रम युवावाणी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम रिली करेंगे। शाम 6 बजे से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिली किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। एक और अंतराल के बाद बाकी के कार्यक्रमों की जानकारी आपको दी जाएगी।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: अंतराल के बाद कार्यक्रम विवरण के तहत कुछ और कार्यक्रमों की जानकारी हमारे केंद्र से जो कि आज प्रसारित होने वाले हैं। सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:30 से। लोकरंग कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 6:45 से और शाम 7:20 से। संगीत सरिता ये कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 8:15 से। रात्रि 8 बजे सुनिएगा संसद समीक्षा, इसे हम रिली करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विधानसभा समीक्षा का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रात्रि 8:30 से। मन चाहे गीत सुनिएगा रात 9 बजे से और रात्रि 10 बजे से सुनिएगा संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण, रैली करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये तो थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 MHz पर। 6:30 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर भूपेंद्र सिंह, मिताली बी सिंह और साथियों के होंगे और आज आप सुनेंगे इसका 56वां भाग।

एक पूरी आयु जी चुकने के बाद भी मनुष्य को विषय वासनाओं से विरक्ति नहीं होती। इसी तथ्य की प्रतीति होने पर मनु को वैराग्य की प्रेरणा मिली थी। 6000 वर्षों तक मात्र जल का आहार, फिर 7000 वर्षों तक वायु का आधार और अंत में 10000 वर्षों तक वायु तक के बिना तपस्या करते न करते ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ने कई बार उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने का परामर्श दिया, किंतु मनु दंपति किसी के डिगाए नहीं डिगे। अंत तो गत्वा सर्वज्ञ प्रभु की परम गंभीर अमृतसनी वाणी सुनाई पड़ी, वर मांगो। कानों में अमृत सरी की ये गूंज सुनकर मनु बोले, हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर ये वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप भगवान शिव के मन में बसता है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हम उसी रूप को जी भर कर देख सकें। मनु दंपति के कोमल, विनय युक्त और प्रेम पगे वचन भगवान को अत्यंत प्रिय लगे और वो उनके सम्मुख प्रकट हो गए। शोभा के सागर भगवान का ये रूप देखकर मनु तथा शत्रुपा के नेत्र अपलक एकटक खुले के खुले रह गए।

रामचरितमानस का संगीतमय पाठ अभी आप सुन रहे थे। गायक स्वर थे भूपेंद्र सिंह, मिताली बी सिंह और साथियों के। आज आप सुन रहे थे इसका 56वां भाग। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं भूले बिसरे गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं अलबेला फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज में। बोल है राजेंद्र कृष्ण के, संगीत है श्री रामचंद्र का।

0: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत है भूले बिसरे गीतों के कार्यक्रम में, और अब कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं दास्तान फिल्म का गीत सुरैया और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में। बोल हैं शकील बदायनी के, संगीत है नौशाद का।

दास्तान फिल्म का गीत आपने सुना। आवाज़ें थीं सुरैया और मोहम्मद रफ़ी की, बोल थे शकील बदायनी के, संगीत का नौशाद का। इस समय आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीतों का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं मधुमती फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार सलिल चौधरी।

मधुमति फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत के साथ ही भूले बिसरे गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

यादें हमारी धरोहर हैं, यादें हमारे दिलों में बसती हैं, यादों का कारवां। सुनिए आकाशवाणी सागर से हर माह के चौथे शुक्रवार को सुबह 10:05

0: यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में होंगे संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। प्रशासनेन उक्तं यत् नीट प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे तदनुबद्ध विषयेषु च संसदि चर्चायै प्रशासनं सज्जमस्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् केन्द्रीय मन्त्री जितेन्द्र सिंहः लोकसभायां विपक्षनेतारं राहुलगान्धिनम् आरोपितवान् यत् प्रशासनस्य आश्वासनस्य अनन्तरमपि सः नीट विषयक चर्चायाः स्वपूर्वामाग्रहात् निवृत्तः।
2: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: पूर्वाह्णे कांग्रेस दलस्य अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अन्य दल सदस्या नीट विषयक चर्चा आधृत्य प्रदर्शनम अकुर्वन्। केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह तथा केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन लोक कल्याण मार्गस्थते प्रदर्शनस्थले कांग्रेस नेतृभिः सह मेलनम कृतवन्तौ। तत्रैव संसदि विपक्ष सदस्यैः पुनः पुनः कृतैः व्यवधानैः लोकसभा राज्यसभा च नीट प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणं समेत्य विविध विषयेषु ह्यः आदिवसं यावत् स्थगिते अभवताम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सद्य एव जाते नीट परीक्षायाः प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे संलग्न जनान् विरुध्य दृढ निग्रहं कर्तुं अथ राष्ट्रस्य यूनां हितस्य संरक्षणं च पुनः उद्घाटितवान्। असौ अवदत् यत् भविष्ये एतादृशानां घटनानां निवारणाय प्रशासनेन बहवः उपायाः क्रियमाणाः सन्ति। प्रधानमंत्री एतत् संसद भवन परिसरे राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुतेः मंगल मिलन इति नामना अपि प्रख्याते संसदीय दलीयोपवेशने उक्तवान्। वार्ताहरान् संसूचयन् संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजुः अवदत् यत् उपवेशने प्रधानमंत्री देशव्यापिनां भावि परीक्षाणां प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन निवारणाय सर्वेषां संबंधित पक्षाणां समन्वित प्रयत्नानां आवश्यकतां विशेषतया प्रतिपादितवान्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः इत्येषा भारत उत्तर मेसिडोनिया देशयोः आर्थिक सम्बन्धान् विस्तारयितुम् उक्तवती। उभयदेशीय उद्योगिनः व्यापारात् परं निवेश प्राविधिकी नवोन्मेषाधारित दीर्घकालिक सहकार्यं प्रवर्धयितुम् आग्रहम् अकरोत्। स्कोप्जे इत्यत्र भारत उत्तर मेसिडोनिया व्यापार मंचं संबोधयन्ती राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् भारतीय राष्ट्रपतेः उत्तर मेसिडोनिया देशस्य एषा प्रथमा यात्रा अस्ति या उभयदेशयोः संबंध सुदृढीकरणे भारतस्य दृढ प्रतिबद्धताम् द्योतयति। सा अवोचत् यत् वर्तमान व्यापारस्य परिमाणं तस्याः संभावनायाः अंशमात्रमेव प्रतिनिधित्वं करोति। अस्य दशकस्य अन्तपर्यन्तं द्वैपाक्षिक व्यापारं द्विगुणं भवितुं शक्यते इति विश्वासः अस्ति। भाजपेति दलं ह्यः लोकसभायाः विपक्षनेतुः राहुलगान्धिनः लोककल्याणमार्गे विरोधप्रदर्शनस्य निन्दामकरोत्। तेन प्रदर्शिताचरणं पूर्णतया अशोभनीयं निन्दनीयं चेति वर्णितवान्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् भाजपेति दलस्य अध्यक्षः नितिननवीनः उक्तवान् यत् एषा घटना दुर्भाग्यपूर्णा अस्ति, भारतस्य राजनैतिक इतिहासे कृष्ण दिवसेति वर्णितवान्। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्यारभ्य द्विदिवसीय फिलीपींस देशस्य यात्रायै मनीला इत्यत्र गमिष्यति। त तत्र असौ आसियान इत्येतस्य अन्तर्गतम् आयोजितेषु विदेशमन्त्रीस्तरीयोपवेशनेषु भागं ग्रहीष्यति इति वार्ताः।

अभी संस्कृत में समाचार आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। सुबह के 7 बज चुके हैं। पेशे कार्यक्रम सुबह सुबह। सभी सुनने वालों को सुमित दुबे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जीवन में हम अक्सर ही परिस्थितियों से संचालित होते बहुत से काम करते हैं। कभी कुछ काम करते हुए बहुत सी परिस्थितियों को जन्म देते हैं और कभी परिस्थितियों को देखते उनके हिसाब से अपना काम करते हैं। लेकिन दोनों ही स्थितियों में हमें हर हाल में अपना काम तो करना ही पड़ता है। यानी हमारे काम करने का ढंग परिस्थितियों को प्रभावित करता ही है और फिर अलग अलग परिस्थितियों में काम करने का ढंग भी अलग अलग होता है और होना चाहिए भी। जिंदगी में बहुत सी खराब स्थितियों के लिए हमारे बहुत से काम और उनको करने का तरीका जिम्मेदार होता है और कई बार परिस्थितियों की वजह से हम काम ना करने का बहाना बनाते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि अगर ऐसा होता या वैसा ना होता तो ये काम हम कर सकते थे। यानी परिस्थितियां हम अपने मन माफिक चाहते हैं, जबकि जिंदगी की अनिश्चितताओं के बीच कब क्या स्थिति सामने होगी कहा नहीं जा सकता और हमें नई नई स्थितियों से निपटने के लिए कब क्या कैसे करना है वही तो सही मायनों में हमारी परख होती है। और कभी परिस्थितियों के हिसाब से तुरंत हमारी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। जहां

हमारी तात्कालिक निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और कहीं परिस्थितियों की वजह से हमारे सब्र का इम्तिहान होता है और इस तरह से हम काम करते करते बहुत सारी विभिन्न परिस्थितियों पर विजय पाना शुरू करते हैं और धीरे धीरे हम बहुत सारे अनुभव इकट्ठा करके आत्मविश्वास के साथ काम करना सीख जाते हैं। इसीलिए अपने दायरे को विस्तार देते, हर तरह की स्थितियों में सहज रहते हुए काम करने का अभ्यास जरूरी है, ताकि कठिन से कठिन स्थितियों में भी हम सफलतापूर्वक अपना काम कर सकें और बिना किसी आश्रय के स्वावलंबन के साथ अपने बलबूते कुछ कर सकें और इस तरह से छोटा या बड़ा जो भी मुकाम हम हासिल करते हैं उसका संतोष कुछ अलग ही होता है, जिससे भरपूर सफलता के साथ सहज भी होने का मार्ग प्रशस्त होता है।

0: सुबह सुबह कार्यक्रम अभी आप सुन रही थी।
1: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
2: तो मिलेगी ना।
1: पर कैसे?
2: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर। कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
0: यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि संकेत। इस कार्यक्रम में आज का विषय है खरीफ में नींदा नाशक का उपयोग और सावधानियां। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एमपी दुबे।
3: भाइयों, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि अभी जो वर्तमान दौर खेती का चल रहा है उसमें हमारे किसान भाई लगभग 100% किसान खड़ी फसल पर नींदा का नियंत्रण करते हैं। तो अभी वर्तमान में हमारे किसान भाइयों ने बृहद पैमाने पर सोयाबीन की फसल और उड़द मूंग की फसल और राहर की फसल लगाई है। उड़द मूंग और अरहर के लिए सबसे पहले हम आपको ऐसे खेत बोलना चाहेंगे जिनमें केवल सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार मुख्य रूप से समाई होती है। उसके लिए दवा का नाम है क्यूजेलोफाप इथाइल। जो बाजार में पैक मिलता है, शीशी मिलती है, 1 लीटर 1 हेक्टेयर के लिए 2.5 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। पानी की मात्रा 500 लीटर प्रति हेक्टेयर। फ्लैट फैन नोजल से आपको इसका छिड़काव करना है, बीडी साइट कोई भी हो, किसी फसल का हो। और अगर मान लीजिए चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, सकरी पत्ती वाले खरपतवार उड़द मूंग राहर में है, तो इमाजी थापर नाम की दवा 300 मिलीलीटर दवा 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी में, या 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होगी। फ्लैट फैन नाजल उपयोग करना बहुत आवश्यक है, नमी होना खेत में बहुत जरूरी है, अन्यथा दवा का प्रभाव ठीक से नहीं मिलेगा। अब सोयाबीन की हम बात करते हैं। सोयाबीन में बहुत सारे ऐसे नींदानाशक हैं जो खड़ी फसल पर उपयोग किए जाते हैं। उसमें मुख्य रूप से इमाजी थापर जो पुराना हर्बिसाइड है, इसकी मात्रा 75 ग्राम से लेकर 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है। नींदा की सघनता है, मिट्टी भारी है तो 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर, मिट्टी हल्की है, नींदा की संख्या अगर कम है, दो परिस्थितियों में से कोई भी एक परिस्थिति हो तो 75 ग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। छिड़काव का समय 20 से 25 दिन होता है। जब नींदा 5-6 पत्ती का होता है, इससे ज़्यादा पत्ती का अगर होता है वो कड़ा हो जाता है तो उसमें दवा की जो प्रभावशीलता है वो कम हो जाती है। अगली दवा है क्यूजेलोफाप इथाइल। इसका 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर अगर छिड़काव करें तो केवल सकरी पत्ती वाले खरपतवार सोयाबीन से समाप्त होंगे। अगर सोयाबीन में केवल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो क्लोरीम्यूरान इथाइल 15 ग्राम प्रति हेक्टेयर के मान से आपको छिड़काव करना है। अगर दोनों प्रकार की नींदा हैं तो क्यूजेलोफाप इथाइल 50 ग्राम और क्लोरीम्यूरान इथाइल 15 ग्राम, इनका मिश्रण जो बाजार में उपलब्ध है उसको आप ले सकते हैं, प्रभाव अच्छा पड़ेगा, दोनों प्रकार की नींदा समाप्त होंगे सोयाबीन में। और इसके बाद एक दवा और है जिसमें इमाजी थापर और इमाजा मार्क्स का कॉम्बिनेशन है। कुछ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जो इमाजी थापर से बच जाते हैं, अगर आप इमाजा मार्क्स और इमाजी थापर वाले कॉम्बिनेशन जो बाजार में 1 cc के रूप में, पैक के रूप में, मिक्सचर के रूप में आती है, अलग से आपको पैक नहीं खरीदना है इसके, इसमें दोनों दवाइयाँ समाहित होती हैं, इसकी जो मात्रा है 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर, इसको अगर छिड़केंगे तो पूरे नींदा, दोनों प्रकार की नींदा समाप्त हो जाएंगे। समय वही है 20 से 25 दिन बोनी के, आप डाल सकते हैं। और इसके

0: बाद जो अगली जो नई दवा है वो है क्यूजेलोफापीटेफुराइल। ये नई दवा है, बहुत प्रभावी दवा है। इसकी जो मात्रा है मात्र 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है। इसमें लगभग दोनों प्रकार के नींदा समाप्त होते हैं। इसके बाद अगला जो नया फार्मूला आया है वो है प्रोपाक्यूजा फाप। इसकी 75 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है और इसमें दोनों प्रकार की नींदा नियंत्रित होते हैं। अंत में जो दवा है वो है दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन है। ये भी एक ही पैक में आता है, एक ही शीशी में आता है। सोडियम एसीफ्लोरफेन और क्लोडीना फाप इथाइल का कॉम्बिनेशन है। ये दवा दोनों प्रकार के खरपतवारों को समाप्त करती है और इसकी जो मात्रा है 1 लीटर प्रति हेक्टेयर सक्रिय तत्व होती है। तो इन नई दवाओं का उपयोग करके हमारे किसान भाई सोयाबीन में इसका उपयोग करें और अच्छी उपज ले सकते हैं। उनके नाम बताए हैं, उनका उपयोग करके आप इन फसलों से अधिकतम पैदावार ले सकते हैं, क्योंकि खरीफ मौसम में सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो नींदा के उपस्थिति के कारण होता है। किसान भाइयों को एक जो प्रैक्टिस करते देखा हमने अपने ज़िले में कि वो नींदानाशक के साथ समय और पैसा श्रम बचाने के लिए नींदानाशक में इल्ली मार यानी कीटनाशी दवा या फूल अच्छे आने वाली दवा का मिश्रण बना के डाल देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। जब तक हमारे किसान को ये जानकारी ना हो कि ये दो दवाएं आपस में मिला के डाली जा सकती हैं, तब तक वो ऐसे प्रयोग बिल्कुल ना करें। होता क्या है कि जब दो प्रकार की दवाएं विपरीत गुणधर्म वाली दवाएं आपस में मिला दी जाती हैं तो वो एक दूसरे को प्रभावित करते, तो ऐसे में ना तो इल्ली या कीट ठीक से नियंत्रित होता है और ना ही नींदा पर प्रभाव उसका बहुत अच्छा पड़ता है।
1: कृषि संकेत कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। विषय था खरीफ में नींदा नाशक का उपयोग और सावधानियां। विशेषज्ञ थे डॉक्टर MP दुबे। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 7:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में होंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
2: थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के बीच आर्थिक संबंधों को विस्तार देने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आ रहे बेहतर परिणाम, खोले गए करोड़ों बैंक खाते। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रभक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाया। और लंबे इंतजार के बाद प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय, कई जिलों में हो रही बारिश। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के बीच आर्थिक संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के कारोबारियों से केवल व्यापार तक सीमित न रहकर निवेश, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में लंबे समय की साझेदारी बनाने का आह्वान किया। स्कोपे में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उनकी यात्रा किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली द्विपक्षीय यात्रा है, जो दोनों देशों के मजबूत संबंधों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राष्ट्रपति ने कहा,
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: हर परिवार तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2014 से प्रारंभ की गई जनधन योजना के बेहतर परिणाम आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस महीने की पहली तारीख तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 58,63,00,000 से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में 3,08,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जमा है। कल राज्यसभा में लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि इनमें 32,68,00,000 खाते महिलाओं के हैं, जबकि 45,62,00,000 अधिक खाते ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। श्री चौधरी ने यह भी बताया कि इस महीने की पहली तारीख तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 27,84,00,000 से अधिक लोगों का नामांकन हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58,78,00,000 से अधिक और अटल पेंशन योजना में पिछले महीने तक 9,29,00,000 से अधिक लोगों का नामांकन किया जा चुका है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। मंत्री ने कहा,
2: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक भरत यादव ने कहा है कि प्रदेश में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्री यादव लोक निर्माण विभाग द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य अभियंताओं के साथ दलों द्वारा भोपाल, जबलपुर, गुना, इंदौर, सीधी, उज्जैन और छतरपुर जिलों के 35 निर्माण कार्यों के औचक निरीक्षण की कल समीक्षा कर रहे थे। भरत यादव ने सड़क निर्माण में असंतोषजनक गुणवत्ता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और निर्माण एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने के भी निर्देश दिए। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना के तहत मध्य प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के 7 अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किया गया है। पुलिस मुख्यालय भोपाल में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने कल अधिकारियों को आईपीएस की रैंक लगाई। रैंक पाने वाले अधिकारियों में निमिषा पांडे, मलय जैन, अमित सक्सेना, मनीषा पाठक सोनी, सुमन गुर्जर, सब्यसाची सराफ और समर वर्मा शामिल हैं। डीजीपी मकवाणा ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उपलब्धि उनके समर्पित सेवा भाव का प्रतिफल है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। स्वतंत्रता पूर्व के चुनौतीपूर्ण दौर में डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्र सर्वोपरि और प्रखर राष्ट्रभक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाया और लाखों लोगों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया। ये बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल रात भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर संस्कार भारती द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के जीवन दर्शन पर विचार साझा करते हुए कहा,
4: इस बात को आज वास्तव में ये अलग प्रकार से महसूस हो रहा है। डॉक्टर हेडगेवार जी का मंचन और डॉक्टर हेडगेवार जी का मूल दर्शन जो था समानता का दर्शन, और उस समानता के दर्शन के लिए एक समान कानून का पास होने का आज सौभाग्य मध्यप्रदेश की धरती पर, ये कितना अद्भुत संयोग।
0: केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने कैच द रेन नाम से एक राष्ट्रव्यापी जल संरक्षण अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य मॉनसून से पहले और मॉनसून के दौरान वर्षा जल के संचयन को बढ़ावा देना है। अभियान का नारा है, बारिश का पानी जहां गिरे और जब गिरे वहीं सहेजे। अभियान के तहत छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने, पुराने तालाबों को और बावड़ियों के जीर्णोद्धार तथा रिचार्ज पिट और चेक डैम बनाकर भूजल रिचार्ज करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी विषय पर आज सुबह 9:30 बजे आकाशवाणी भोपाल के खास कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में को सुनना ना भूलें। इस कार्यक्रम में हमारे साथ प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और जल संरक्षणवादी उमा शंकर पांडे रहेंगे। दो तीन सप्ताह के लंबे इंतजार के बाद प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। कल भोपाल, ग्वालियर, चंबल, रीवा, जबलपुर सहित 30 से अधिक जिलों में झमाझम बारिश हुई। माओगंज, उदयपुरा, बीरसिंहपुर सहित कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज गुना, श्योपुरकुला, सतना, सिवनी, बालाघाट, पन्ना, मैहर, राजगढ़, बैतूल और कटनी समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। आगामी 2 से 3 दिनों तक

देश भर में मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे फसलों को नया जीवन मिलने की उम्मीद है। हालांकि अभी प्रदेश में सामान्य से करीब 17% तक बारिश कम होने की खबर है। खंडवा संवाददाता के अनुसार जिले में कल तक 295.2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। वहीं सतना से मिली रिपोर्ट के अनुसार जिले में 317.2 मिलीमीटर और मैहर में 240.2 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम है। गुना जिले में 309.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन आज प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण सूचनाओं और कई महत्वपूर्ण शासकीय विधेयकों पर चर्चा होगी। खंडवा जिले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर डॉ. पूर्वा मित्तल आज जिले के भ्रमण पर रहेंगे। आगरमालवा कलेक्टर प्रीति यादव ने पोषण समिति की बैठक में पात्र हितग्राहियों के आधार नामांकन और अपडेशन के लिए स्कूल और सेक्टर स्तर पर विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। सतना पुलिस विभाग के नशा मुक्ति अभियान के तहत पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में चित्रकला, निबंध और स्लोगन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विद्यार्थियों ने नशा मुक्त समाज का संकल्प लिया। मंदसौर जिले में डायरिया रोको अभियान के तहत पीएचई विभाग ने पेयजल स्रोतों का क्लोरिनेशन किया और ग्रामीणों को जल जनित बीमारियों से बचाव के उपाय बताए। मैहर में सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर विदिशा मुखर्जी ने 17 अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटा और 40 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इंदौर में महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। गुना कलेक्ट्रेट में कल आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने 295 आवेदनों पर सुनवाई की। इस दौरान कई मामलों का त्वरित निराकरण भी किया गया। शिवपुरी जिले में करगिल विजय दिवस और सेवा सुशासन के 12 वर्ष पर पीएम कॉलेज में 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी आज से शुरू हो रही है। भोपाल नगर निगम के अमले ने सड़कों पर घूमने वाले 7 मवेशियों को कांजी हाउस और 4 घायल पशुओं को आसरा चिकित्सालय भेजा है। नीमच में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर गठित विशेष सेल की बैठक कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में आयोजित होगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:20 हुए हैं। पेश है मन चाहे गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं अनुराग फिल्म के गीत के साथ। इसे गाया है लता मंगेशकर ने, लिखा आनंद बख्शी ने और धुन है एसटी बर्मन की। फरमाइश आप सभी की ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से व्हाट्सएप फरमाइश भेजने वाले हैं सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सरबत देशमुख, कुमारी सानवी और कुमारी कल्पना देशमुख। गुजरात गांधीग्राम से ये फरमाइश है प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी की। ग्राम हांडी खेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से ये फरमाइश लिख भेजी है राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा ने। सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गली श्री रामपुर से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली है अशोक दले, सविता दले, अनिकेत रोहिणी, ऋषिकेश और जीविका दले की। पुनावले पुणे से ये फरमाइश मिली है अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका और विशाखा सोनवने की। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं अनुराग फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है मन चाहे गीतों के कार्यक्रम में। कार्यक्रम की अगली पेशकश प्यार किए जा इस फिल्म से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने। बोल हैं राजेंद्र कृष्ण के, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फरमाइश है आप सभी की। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरकलकर रतनमाला और आरती सुरलकर की ये फरमाइश है। बीट शहर महाराष्ट्र से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महित्रे और अंजलि करवा की। साथ ही बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टबोल और पीबी कुलथे की ये फरमाइश है। हिसार से ये फरमाइश में मिली राजकुमार डुंडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार डुंडी की। आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं, सुनते हैं प्यार किए जा इस फिल्म का गीत।

0: ये खुशबू मुझे दीवाना बना देती है।
1: वाओ जीजा जी, सो रोमांटिक।
2: ये मेरी नहीं, 287 मेरी चाय की खुशबू है। तन मन जगाए,
0: बात बन जाए।
2: 287 मेरी चाय।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: वाह जी राम जी, वाह जी राम जी।
2: मुझे भी चाहिए।
3: संदेश के बाद मन चाहे गीतों के कार्यक्रम की अगली पेशकश तलाश फिल्म से। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, बोल मजरू के, संगीत एस डी बर्मन का, फरमाइश आप सभी की। जनकपुरी सहारनपुर से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो की। मोहल्ला हलवाई यान शेरकोट जिला बिजनौर से ये फरमाइश है मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर की। ग्राम पजोनिया जिला जालौन से ये फरमाइश में मिली सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया की। जिला बालोद छत्तीसगढ़ से ये व्हाट्सएप फरमाइश लिख भेजी है देव नारायण साहू, कुमारी योगिता, कुमारी गीतिका, चंचल रानी साहू, उमाबाई साहू, त्रियांश कुमार साहू ने। आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं, सुनते हैं तलाश फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं।

0: फरमाना।
1: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
2: तो मिलेगी ना।
1: पर कैसे?
2: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है मन चाहे गीतों के कार्यक्रम में, और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं आप सभी की फरमाइश। ग्राम नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुक्कू और भाविक सिक्का की। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से ये फरमाइश भेजते हैं बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार। राम देवरा से ये फरमाइश में मिली दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से ये फरमाइश हमें प्राप्त हुई खुदा बख्श खलीफा की। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम पेशकश। फिल्म का नाम चिराग, आवाज मोहम्मद रफी की, बोल मजरूह के संगीत मदन मोहन का।

इस गीत के साथ ही मन चाहे गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 7:45 हो चुके हैं। सुनते हैं कार्यक्रम संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में पहली पेशकश फाल्गुनी पाठक के स्वर में बोल नवाब आरजू के, संगीत ललित का, एल्बम तेरी में प्रेम दीवानी।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
3: तो मिलेगी ना।
2: पर कैसे?
3: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: संदेश के बाद संगीत सरिता इस कार्यक्रम में तमाम सुनने वालों का बहुत स्वागत करते हैं और इस कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं फैज़ अनवर का लिखा गीत। संगीत है सामी मारूफ का, आवाज़ है बाबुल सुप्रियो की, एल्बम है सोचता हूँ। गीत सुनने से पहले सुनते हैं ये संदेश।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: और अब सुनते हैं ये गीत, आवाज़ है बाबुल सुप्रियो की, बोल हैं फैज़ अनवर की।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम संगीत सरिता अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। सोमवार दिनांक 27/7/2026 को प्रातः 8:30 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम बिंदिया के अंतर्गत फोन इन कार्यक्रम हेलो सखी की रिकॉर्डिंग आज बुधवार दिनांक 22/7/2026 को प्रातः 11 बजे से की जाएगी। श्रोता कॉल लगाकर कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। कॉल करने के लिए फोन नंबर है 2408 45, सागर का एसटीडी कोड है 07582। तो कार्यक्रम का प्रसारण दिन सोमवार प्रातः 8:30 से बिंदिया कार्यक्रम में हेलो सखी। सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 8 बजने को हैं। थोड़ी देर में होंगे समाचार। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवार में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का सामना उन्नति होटा से होगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा।
6: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसेडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
5: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। 3 दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
7: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवण को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
8: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित आईएनएस मलवान आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें आरबीओ 6000 रॉकेट और डीआरडीओ द्वारा विकसित टॉर्पेडोज की शक्ति है। जर्मनी और भारत द्वारा तैयार किए गए सोनार का उपयोग भी किया गया है। माहे श्रेणी के इस युद्धपोत तटीय और उथले समुद्र क्षेत्र में प्रभावी परिचालन के लिए बनाया गया है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
9: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
10: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई।
2: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुँचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ।
3: UCC के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा। तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिविंग रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि सरकार सदन में नीट सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
4: और मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावादी सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं न कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।
1: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और हरिहरन अम्स करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नास।
6: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के धरने, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान संबंधी समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। नवभारत टाइम्स का शीर्ष समाचार है, जंतर मंतर पर लौटी भीड़, पीएम के घर के बाहर से विपक्ष के नेता हटाए। पत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन को भी सुर्खियों में जगह दी है, पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया घोर पाप। राजस्थान पत्रिका, लोकसत्य, दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला ने धरना दे रहे विपक्षी नेताओं की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने सिक्किम में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मजदूरों की मौत के समाचार को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पत्रों ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के आश्रितों को अनुग्रह राशि की घोषणा का उल्लेख करते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार और राहत अभियान का चित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव न्यूज स्तंभ के अंतर्गत राजस्थान के आंधी गांव का उल्लेख किया है, जिसे बायोटेक वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा ने 100% कचरा रहित और आत्मनिर्भर बना दिया है। पंजाब केसरी ने कमर्शियल जहाज पर हुए रूसी हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद रूसी राजनयिक को तलब किए जाने का समाचार सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर पर आधारित संपादकीय को शीर्षक दिया है, सुरक्षा की फिक्र। पत्र का कहना है कि भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं।

0: विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है, मगर सवाल ये है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।
1: और लीजिए अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का मुकाबला होगा उन्नति हुड्डा से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी समाचारों का अनुप्रसारण किया गया आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:15 हो चुके हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और इस कार्यक्रम में शुरुआत कर रहे हैं गणेश वंदना के साथ। कलाकार हैं देवकी नंदन सकवार।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2